तामा, पितल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान को होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852010504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

तामा, पितल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9856120046 9852110504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050508 97055007 मनसरा ताप चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

0: अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा तात चिकन बिरयानी पोखरा 8 जालपा रोड
1: विगत को 20 वर्ष देखि हजुरको सेवामा समर्पित
2: वेस्ट सल्फर ल्यायो नयाँ जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 मा एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 मा दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
1: अब सबैको लागि वेब सर्फर भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देशको पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंट्रानेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवा फरक सब विश्वसनीय नेपाल भरी फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस सेवा को लागी वेब सर्फर घर घर में फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस
3: कॉन्टैक्ट 0615530500 0615889848
1: फॉर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.mp
4: पानी प्यास लाग्यो यही घैटाको पानी खाइदिउँ कि क्या हो
5: नाइ बाबु वर्षाको समय छ पानी उमालेर वा फिल्टर गरेर मात्र पिउनु पर्छ न त बिरामी होइएला
6: स्वच्छ खाने पानी र सफा वातावरण स्वस्थ जीवनको आधार हैजा झाडा पखाला र डेंगु जस्ता रोगबाट बच्न व्यक्तिगत र वातावरणीय सरसफाईमा ध्यान दिऊ घर वरपर पानी जम्न नदेऊ स्वस्थ बनाऊ
7: अनुरोध गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय प्रेस रजिस्ट्रार को कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरा

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9860-1246 9850-10504 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705505508 9705505507 मनसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

तत्तरे हो यतिका दिन गयो बसेर के भयो काम गर्ने दिन सबै भाई हिँड़

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705508 9705508 मुन्सरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरामा।

भागवत दूसरे स्कंद को छठो अध्याय को 36 श्लोक में ब्रह्मा जी ने स्वीकार करे ना हम न यूयम हे नारद म भगवान ला जान दीना। ब्रह्मा जी ने हाथ उठाई दिए ना हम म जान दीना। जब मेरे एक साथी तेल जान देना तो को भगवान शंकर भगवान शंकर पनि भगवान ला जान देना। बाकी तिमेरो नारद सनकादिक इत्यादि तो मेरे छोरा नाती हो म बहुले जान्दिनँ तिमीले के जान्दछ। जब गुरुले जान्दैन भने शिष्यले कसरी जान्छ। हेर्नुस् आदि शंकराचार्य आदि जगतगुरु शंकराचार्य जो भए उनका गुरु थिए गोविन्दाचार्य। गोविन्दाचार्य का गुरु थे गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य का गुरु थे सुखदेव परमहंस। सुखदेव परमहंस का गुरु थे वेदव्यास। वेदव्यास का गुरु थे पराशर। पराशर का गुरु थे शक्ति। शक्ति का गुरु थे वशिष्ठ। वशिष्ठ का गुरु थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का गुरु भगवान। भगवान बाट ज्ञान प्राप्त गरेको ब्रह्मा जी ले हाथ उठाई दिए म जान्दिन त तपाईं हाम्रो के हालत कसरी जान्न सक्छ। त आज तपाईले प्रवचनमा के बुझ्नु भयो कि भगवानलाई जान्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् निराशयुक्त कुरा आयो तर डोन्ट वरी मैले ठेक्का लिएको छु तपाईँलाई जनाउनलाई। म जनाउँछु त्यही वेद शास्त्रद्वारा सिद्ध गर्छु म भगवानलाई जान्न सकिन्छ।